0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
3: और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
3: शुभ शुभ बोलो क्या
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
8: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं कृष्णा जी नमस्ते
9: नमस्ते सर नमस्ते
8: भाई मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ
9: सर धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था फिर मैंने एमबीए किया फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं
8: कृष्णा जी भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए
9: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे जो महान साम्राज्य थे जैसे चोलास थे पल्लवास थे करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में अहोम्स थे जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
8: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
9: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराजे चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
8: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
9: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था। तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा। तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके। तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टैब लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास से एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
8: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
9: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
8: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनोपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोड़ाई कनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्म में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
10: आकाशवाणी மன் கி பாத் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வானொலி வழி தம் கருத்துக்களை நாட்டு மக்களுடன் பகிர்ந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியினை இதுவரை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டோம். தொடர்வது மனதின் குரல். பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சற்று முன் நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய மன் கி பாத் உரையின் தமிழாக்கம்.
11: எனதருமை நாட்டு மக்களே, வணக்கம். மனதின் குரலின் இந்த புதிய பகுதிக்கு உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை நான் வரவேற்கிறேன். புதிய முயற்சிகளை பார்வைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மேடைதான் மனதின் குரல் என்பதை நீங்கள் அனைவரும் நன்கு அறிவீர்கள். நாட்டு மக்களின் நூதனமான எண்ணங்கள் மீது விவாதம் நடக்கிறது. இவற்றில் பல கருத்துக்கள் எண்ணங்களின் பின்புலத்தில் மக்கள் வாழ்க்கையின் பெரும் சக்தியை முதலீடு செய்திருக்கின்றார்கள். நண்பர்களே, சில காலம் முன்பு சமூக ஊடகத்தில் யாரோ ஒருவர் ஆஷாட ஏகாதசியின் புனிதமான வேளையிலே வரலாற்றை சுவாரஸ்யமானதாக ஆக்கும் எனது முயற்சியை நான் தொடங்குகிறேன் என்பதை கூறுவதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று எழுதியிருந்தார். அவர் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்திய எண்ணம் மிகவும் எளிமையானது. நீங்கள் இந்த வலைத்தளத்திற்கு சென்று ஏதோ ஒரு ஆண்டை தேர்வு செய்யுங்கள். அந்த காலத்தில் பாரதத்தின் எந்த பாகத்தில் யார் ஆட்சி செய்து வந்தார்கள் என்பது உங்களுக்கு சுலபமாக தெரிந்துவிடும். எனக்குமே கூட இது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. இது குறித்து மேலும் தகவல்களை பெறலாமே என்று எண்ணமிட்டேன். மும்பையிலே வசிக்கின்ற கிருஷ்ணா சேஷாத்ரி அவர்கள்தான் இந்த செயலை செய்திருக்கிறார் என்பது எனக்கு தெரிய வந்தது. மேலும் சுவையான விஷயம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணா அவர்கள் தனது வலைத்தளத்திற்கும் கூட எளிமையான பெயரை சூட்டியிருந்தார் என்பதுதான். www.bharatrajya.com. இவர் மேற்கொண்ட இந்த முயற்சி பற்றிய தகவல்கள் மக்களிடம் சென்று சேர வேண்டும், ஆகையால் அவரோடையே பேசி பார்க்கலாமே என்று தோன்றியது. நண்பர்களே, கிருஷ்ணா அவர்கள் இப்போது நம்மோடு தொலைபேசியிலே இணைகிறார். கிருஷ்ணா அவர்களே, வணக்கம்.
12: வணக்கம் சார். வணக்கம்
11: சார். நீங்க தொழில்நுட்பத்துறையைச் சேர்ந்தவர் இல்லை, வரலாற்று ஆசிரியரும் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துச்சு. ஆனாலும் கூட எப்படி நீங்க தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வரலாறு தொடர்பான ஒரு தளத்தை உருவாக்கினீங்க? இதெல்லாம் எப்படி உருவாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்க நான் ஆவலா இருக்கேன்.
12: நன்றி சார். உங்களோட பேசுவது எனக்கு மிகப்பெரிய சௌபாக்கியமான விஷயம் சார். என்னை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிக்கிறேன். நான் ஒரு பொறியாளரா இருந்தேன், பிறகு நான் MBA செஞ்சேன், பிறகு மார்க்கெட்டிங் துறைக்கு போயிட்டேன். ஆனால் இதெல்லாம் நான் செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் என் மனசுக்குள்ள என் சின்ன வயசு ஆசையான வரலாறு மேலேயே இருந்துச்சு. வரலாறு தொடர்பாக ஏதாவது நான் செய்யணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன். எப்படி அதை சுவாரஸ்யமாக்குறது? இப்போ நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குற வழிமுறையில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும்னு கூட தோணும். இது மூலமாக வரலாற்றை ஒரு கதை வடிவத்தில் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும்னு நினச்சிப்பேன்.
11: கிருஷ்ணாஜி, பாரத நாட்டு வரலாற்றோட எந்த பக்கத்தை பற்றின தகவல்கள் அதிக அளவில் மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க?
12: நம்ம பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் கற்பிக்கப்படுற பாரத நாட்டு வரலாறுன்னு நீங்கள் பார்த்தா அதில் ஏதோ ஒரு சாம்ராஜ்யம் அல்லது ஒரு ராஜ்யம் அது பற்றின பார்வை அதோட கண்ணோட்டம் கற்பிக்கப்படுது. அந்த சாம்ராஜ்யங்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமாகவே முக்கியத்துவமும் கிடைக்குது. இந்த சுழலில் சிக்கி இன்னும் நம்ம பல சாம்ராஜ்யங்கள், எடுத்துக்காட்டா சோழர்கள், பல்லவர்கள், காஷ்மீரத்தில் இருந்த கார்கோடக வம்சம் அல்லது அசாமில் இருந்த அஹோம்கள், இவங்க குறைஞ்சது 600 ஆண்டுகள் வரை அசாமில் தங்களோட கலாச்சாரம், தங்களோட விழுமிய முறைகளை பராமரித்து வச்சுருந்தாங்க. இவங்களை பற்றி நமக்கு தெரியாது. ஆகையால் இப்படிப்பட்ட மாபெரும் சாம்ராஜ்யங்களை பற்றியும் மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற வகையில் ஒரு தளத்தை ஏற்படுத்தணும்னு நான் தீர்மானித்தேன்.
11: கிருஷ்ணாஜி, நீங்கள் இத்தனை கடுமையாக உழைக்கிறீங்க. அனுமானமான கேள்வி ஒன்றை நான் கேட்குறேன். இந்திய வரலாற்றில் 3 பேர் கூட பேச உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தா நீங்கள் யார் கூட பேச விரும்புவீங்க, ஏன்?
12: ஆமாம் சார், நான் முதலாவதாக ராஜராஜ சோழன் பற்றி அல்லது ராஜேந்திர சோழன் கூட பேசுவேன். ஏன்னா சோழ சாம்ராஜ்யத்தோட மிக சக்தி வாய்ந்த அரசர்களாகவும் மிக முக்கியமானவங்களில் ஒருத்தங்களாகவும் அவங்க இருந்தாங்க. தஞ்சை பெரிய கோயிலான பிரகதீஸ்வரர் கோயில் இல்லை கங்கை கொண்ட சோழபுரம் மாதிரியான பிரம்மாண்டமான சிவன் கோயில்களை கட்டுறதுக்கு தேவையான தொலைநோக்கு பார்வை, திட்டமிடல், அந்த எண்ணம் அடுத்த 1000 முதல் 2000 ஆண்டுகள் வரை கூட வரக்கூடிய தலைமுறையினருக்கு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய இந்த தொலைநோக்கு, இந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்க விரும்புவேன். ரெண்டாவது ஆளுமைன்னு பார்த்தா என் கண்ணோட்டத்தில் இந்திய வரலாற்றோட மிகவும் குறைத்து மதிப்பிடப்படுற ஆளுமை சார் அவர். அவர் பெயர் ஹேமு. அவரை பற்றி இந்திய வரலாற்றில் பார்த்தோம்னா அதிகபட்சம் 2-3 வரிகளில் படித்து முடிச்சிடுறோம். அந்த ஹேமு ஒரு சாதாரண குடிமகன், ஒரு வியாபாரி. அவர் தான் ஒரு மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்புறாரு. அவர் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குனவர் மட்டுமல்லாமல் இராணுவ மேதாவிலாசம் படைத்த ஒரு மதியூகியும் கூட. தன்னோட வாழ்க்கையில் 23 போர்களில் களம் கண்டு 22 போர்களில் ஜெயிக்கவும் செஞ்சுருக்காரு. அவரோட சிந்தனா ஓட்டம் எப்படி இருந்துச்சு, எப்படி ஒரு சாதாரண குடிமகனாக இருந்து ஒரு பெரிய அரசனாக உருவாகிறாரு, அவரோட பயணம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கவும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் சார். அடுத்து மூணாவது ஆளுமைன்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு சுவாரஸ்யமான ஆளுமைன்னு தான் சொல்லணும். அவங்க ஒரு பெண். அவங்க திரிபுவன் மகாதேவி. ஒடிஷாவோட பௌமகாரா வம்சத்தை சேர்ந்த இவங்களோட கதையும் ரொம்பவும் சுவாரஸ்யமானது. அவங்க 850 ஆண்டு வாக்கில் அவங்க அண்டை நாடான பாலா வம்சத்து அரசர் இவங்க ராஜ்யம் மேல போர் தொடுத்தாங்க. அதுல இவங்க கணவர் மாண்டு போயிடுறாரு. இதன் காரணமா இவங்க ராஜ்யம் சிரித்து போய் அதுல இருந்த படைத்தலைவர்கள்லாம் ராஜ்யத்தை விட்டு போக ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப திரிபுவன் மகாதேவியானவங்க ராஜ்யத்தை தன் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்தாங்க. அவங்க இந்திய வரலாற்றிலேயே முதல் சுதந்திரமான அரசியாக ஆனாங்க. அவங்க ராஜ்யத்தை ஸ்திரப்படுத்தினதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை சக்தி வாய்ந்ததாகவும் ஆக்குனாங்க. எந்த அளவுக்கு சக்தி உடையவங்களா அவங்க ஆனாங்கன்னா, அடுத்த 100 ஆண்டுகள் வரை அவங்க கலிங்க பகுதியில் ஆட்சி செலுத்தினாங்க. அந்த வகையில் இந்த 3 சுவாரஸ்யமான ஆளுமைகளையும் வரலாற்றில் நான் சந்திக்க விரும்புகிறேன் சார்.
11: கிருஷ்ணாஜி, நீங்கள் வரலாற்றில் வாழலை, நீங்கள் முழுமையாக அதில் மூழ்கிட்டீங்கன்னு புரியுது. நானும் கூட ரொம்ப ஆர்வமாக உங்களோட தளத்துக்கு போனேன். இதில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா, உங்கள் தளத்தில் ஒரு டேப் இருக்குது. அங்கே மக்கள் திருத்தங்களையும் ஆலோசனைகளையும் அளிக்க முடியும். இப்படிப்பட்ட ஆக்கப்பூர்வமான பின்னூட்டங்களை ஏற்றுக்கிற வகையில் இருக்கிறது ரொம்பவே பெரிய விஷயம். மக்களோட ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு வர தொடங்கியாச்சா? அது தொடர்பாக நீங்கள் எப்படி பணியாற்றுறீங்க?
12: ஆமாம் சார், நிறைய ஆலோசனைகள் வருது சார். 2 வகையான ஆலோசனைகள் சார். ஒன்று எப்படி வருதுன்னா, அதில் எனக்கு திருத்தங்களை அறிவுறுத்துறாங்க. இந்த மாநிலத்தில், இந்த காலத்தில், இந்த தேசத்தில் இந்த அரசர் இருந்தார், அல்லது இந்த காலத்தில் இந்த யுத்தம் நடந்துச்சு, இப்படி சில ஆலோசனைகள் வரும். 2வது ஆலோசனை எப்படி இருக்குன்னா, நீங்கள் இந்த வலைத்தளத்தில் இந்த அம்சத்தையும் கூட போடலாமே, அல்லது இதை சேர்த்துக்கலாமேன்னு, இப்படி 2 வகையாகவும் ஆலோசனைகள் வரும். இப்போ இந்த பகுதியில் இந்த காலத்தில் இந்த ராஜா ஆட்சி புரிஞ்சாருன்னு யாராவது சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கிறோம். நாங்கள் அடிப்படையில் சில ஆதாரங்களை அடிப்படையாக வச்சு தான் இணைக்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் இந்தியாவை காமிக்கிறீங்க, ஆனால் மாநில அளவுலையும் காமிக்கலாமேன்னு சொன்னப்போ இது நல்லா இருந்துச்சு, நாங்களும் அந்த அம்சத்தை அமல் செஞ்சோம். அடுத்ததாக இன்னொரு அம்சத்தை அறிமுகம் செஞ்சோம். அதில் நாங்கள் ஒரு துருப்பு சீட்டு மாதிரி உருவாக்கி பசங்க வரைக்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக எல்லா ராஜ்யங்கள் பற்றின தரவுகள் புள்ளி விவரங்களையும் கொடுத்தோம். அப்போ ஒருத்தர் ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தார், அதை நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒன்று திரட்டி வைங்க, அப்போ தான் எல்லாராலையும் தரவிறக்க செஞ்சு எங்களால் அதை பகிர முடியும்னாரு. இதை நாங்கள் அமல் செஞ்சிட்ருக்கோம் சார். நாங்கள் ஒன்றும் அதிமேதாவிகள் இல்லை. நாங்கள் தப்பு செய்வோம்னு தெரிஞ்சு தான் எங்களை திருத்திக்க ஒரு டேப் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இது நம்ம எல்லாரோட தளமாகவும் இருக்கணும். இனி வருங்காலத்தில் அனைவரோட பங்களிப்பு காரணமாக அடுத்த சில ஆண்டுகளில் வரலாறு ஒரு சுவாரஸ்யமான பாடமாக மாறுகிற அளவுக்கு இந்த வலைத்தளத்தை உருவாக்குவோம்.
11: கிருஷ்ணாஜி, நீங்கள் உள்ளபடியே மிகப்பெரிய வேலையை செஞ்சுருக்கீங்க. வரலாறு தவிர உங்களுக்கு இன்னும் பல பொழுதுபோக்குகள் இருக்கலாம், வேற எதில் உங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்குது?
12: அப்படிலாம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை சார். நான் அத்தனை சுவாரஸ்யமான ஆசாமியெல்லாம் இல்லை சார். சார், எனக்கு தொழில்நுட்பம்னா பிரியம் உண்டு, வரலாறு மேலே ஆர்வம் உண்டு. தொழில்நுட்பமும் வரலாறும் ஒன்று சேரும்போது அதுலேயே நாள் முழுக்க மூழ்கி கிடப்பேன் சார்.
11: நல்லது கிருஷ்ணாஜி, உங்களுக்கு பல பல நல்வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் ரொம்ப நல்லதொரு தொடக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க. மேலும் உங்கள் வழிமுறையும் எப்படி இருக்குன்னா, மக்கள் அதில் இணைவாங்க அப்படிங்கிற முழு நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்குது. என் தரப்பிலிருந்து உங்களுக்கு பல பல நல்வாழ்த்துக்கள். நண்பர்களே, கிருஷ்ணா அவர்களின் இந்த முயற்சி வரலாற்று மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, இது நம் அனைவருக்கும் கூட கடந்த காலத்தை சுவாரஸ்யமான முறைகளில் அறிந்து கொள்ள உதவிகரமாக இருக்கும். உங்களிடம் கூட இப்படிப்பட்ட முயற்சிகள் பற்றிய தகவல் இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக பகிர்ந்து கொள்ளவும். எனதருமை நாட்டு மக்களே, வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்துக்காக போதை பழக்கமில்லா இளைஞர்கள் இந்த இயக்கம் நாடு முழுவதும் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இதன் நோக்கம் தெளிவானது. போதைப் பொருள் இல்லாத இளைஞர்கள், ட்ரக் ஃப்ரீ இந்தியா. பலர், குறிப்பாக நமது இளைஞர்கள், அதிக எண்ணிக்கையில் இந்த இயக்கத்தில் பங்கெடுத்து வருகிறார்கள். இது பாரத நாட்டு இளைஞர்களின் உடல் நலம், அவர்களுடைய சந்தோஷம், வளமான எதிர்காலத்துக்காக நமது சமூக ரீதியிலான உறுதிப்பாடு. நண்பர்களே, போதை தனது பிடியில் ஒரு தனிநபரை மட்டும் பீடிப்பதில்லை. இதன் பாதிப்புகளால் ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் சமூகமும் அவதிக்கு உள்ளாக நேர்கிறது. போதைப்பொருள் தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவோர், போதையால் பீடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்வோர் ஆகியோரை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன். போதையில்லா பாரதம் படைக்க வலுவான கோஷம் எதையாவது உங்களால் உருவாக்க முடியுமா? நமது இளம் இசையமைப்பாளர்கள் போதையில்லா வாழ்க்கை தொடர்பான பாடல்களை உருவாக்கலாம். மாணவர்களும் நாடகக் குழுக்களும் மனதை தொடக்கூடிய வகையில் குறுநாடகங்களை எழுதி நடிக்கலாம். இதில் போதைப் பொருட்களால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களோடு கூடவே அவற்றிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய பாதையையும் வெளிப்படுத்தலாம். நம்முடைய நாட்டிலே வெகு சிறப்பான உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குபோருக்கு குறைவேதும் இல்லை. பல்வேறு மொழிகளில் இப்படிப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை ஏற்படுத்தி இதனால் சமூகத்துக்கு உதவும் வகையில் அவர்கள் செயலாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்களுடைய இந்த முயற்சிகளை ஹேஷ்டேகுடன் சமூக

0: நரசிம்ம படத்திற்காக சாய் சிவன் மகாலட்சுமி பாடியது அந்த பாடல். திரைக்கானம் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கை டெல்லியிலிருந்து.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. In his Mann Ki Baat program, Prime Minister Modi highlights women empowerment through PM Swanidhi, says 35 lakh women benefiting from the scheme. Prime Minister highlights Mission Shakti Sat as a platform for 12,000 girl students from 108 countries to learn satellite technology and pursue innovation. Prime Minister Modi appeals youth, musicians and content creators to develop jingles, slogans and content for Nasha Mukt Bharat campaign, says campaign gaining momentum across the country. Death toll from flash floods in Nepal rises to 734, nearly 2,500 people still missing. India sends fourth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued for Odisha today. And defending champions Germany to take on Spain in the men's FIH Hockey World Cup 2026 final in Wavre, Belgium this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi is holding a bilateral talks with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. The two leaders are reviewing cooperation in trade and investment, defence, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. MOUs in this regard are expected to be signed today. Today, Prime Minister Narendra Modi first attended a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan, and later he reached to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where he was given a ceremonial welcome. And now, both the leaders are participating in the bilateral talks. Prime Minister Narendra Modi has said that the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign is gaining momentum rapidly across the country. Sharing his thoughts in the Mann Ki Baat program on Akashwani this morning, Mr. Modi expressed happiness that the campaign with the goal for drug-free youth and a drug-free India is not merely a formality, as many people, especially the youth, are joining it in large numbers.
2: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया. बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं. आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्ज्वल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है.
1: The Prime Minister said drug addiction does not just engulf a single individual, but the entire family and society bear the consequences. He commended those who raise awareness against drugs and step forward to help individuals struggling with addiction.
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है. मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले.
1: The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana.
2: PM Swanidhi Yojana ki labharthiyon mein karib 46% mahilaye hain. Yani देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं. गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है. बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी. फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place.
2: देश के अलग-अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: Mr. Modi said today the flight of the country's daughter's dreams is soaring from the earth to the outer space. He said India is bringing together thousands of daughters who are nurturing such dreams

0: Chanida blows out Nandini's furniture. What a ball. Slipping under the bat, through the pads. And LEDs on the stump glow. India lose wicket number 9. The Thailand fans here in Dubai International Stadium are ecstatic. Look at that lovely delivery. In dipping, Yorker breaches the defense. Furniture disturbed.
1: क्या जबरदस्त गेंदबाजी. आज जितनी प्रशंसा की जाए थाईलैंड की गेंदबाजों की उतनी कम है. थाईलैंड इस मंच को उन्होंने चुना है ये स्टेटमेंट जारी करने के लिए कि भारत बेशक T20 क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन होगी, लेकिन हमने भी कुछ इरादे लेकर के इस मंच पर कदम रखा है और कुछ बड़ा करने के इरादे से इस एशिया कप में वो आई हैं. जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, और आसान नहीं होता पंकज जिस तरह की वापसी करना जब आपने 10 ओवर में लगभग 100 रन बनवा दिए और सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं, और इसके बाद से वापसी निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी टीम के लिए.
0: No doubt about it. And Indians rushing through their shots. Kranti Gaur here, the last batter in the middle. And India need to play 20 overs. It's a psychological mark. But Thailand today have done a phenomenal job. And they might just create history at the Dubai International Stadium. Chanida bowls, trying to go for that big shot towards long off. Kranti will open the account. 138 now for the loss of 9 wickets. Unbelievable action in the last 5-7 overs, Iqbal, and the way. And Chanida, we were talking about her in swing, and she was getting it right on the money. And the Thailand girls have rushed through that Indian middle order in the last 6-7 overs, and that has made a lot of difference. India will need to look at it very, very sharply. Sri Charani there. Now, you can't really expect a lot of runs from these batters here, but the fact remains that will India be able to play the 20 overs? Is the big question. Nicely flicked off her legs by Sri Charani in the deep backward square leg region. She will pick up a couple of runs to open her account. And the score moves up to 140 for the loss of 9 wickets. Just 3 runs from Chanida in this over and a wicket. And if you look at her bowling analysis earlier, Chanida has bowled 2 overs and has given away 11 runs. And now she has picked up a wicket in her third over. Very, very good bowling. And captaincy from Thailand has also been very, very good. They have changed the fielders, the bowlers. They have a lot of bowlers in their squad, which makes a lot of difference for them, gives them a lot of options. Coming around the wicket, this time hitting the pads of Sri Charani, trying to kind of work it on the onside. But that is end of over number 18. 140 for the loss of 9 wickets. Can this last pair survive another 12 deliveries, Iqbal? A very important statement here by the Thailand girls in this particular Asia Cup.
1: निश्चित तौर पर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है थाईलैंड ने, और भारत को इस समय सोचने पर विवश किया है कि आखिर किस तरह से उन्होंने गलतियां की हैं, और खास तौर पर जो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक्स बीच में आए हैं, खास तौर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, और 2 रनआउट्स जो थाईलैंड ने एग्जीक्यूट किए, उन 2 रनआउट्स का भी बड़ा अहम योगदान है, और दोनों रनआउट डायरेक्ट हिट के जरिए उन्होंने आउट किए हैं. बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन, कमाल की वापसी. पहले 10 ओवर भारत के नाम, लेकिन अगले 10 ओवर में जो वापसी की है थाईलैंड ने, वो बहुत ही अनबिलीवेबल लगती है, यकीन के परे लगती है कि भारत जैसी टीम के खिलाफ थाईलैंड जैसी टीम इस तरह की वापसी करेगी. माया 19वां ओवर लेकर के आ रही हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली बॉल. इस पहली बॉल को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, रन आउट का वहां पर चांस है, लेकिन सीधा थ्रो इस बार लगा नहीं, और ऐसे में 1 रन जोखिमपूर्ण ही सही भारत के खाते में आता हुआ.
0: एक बार थिंग्स आर टर्निंग आउट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन द कॉन्फिडेंस गोज अप, व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू. थाईलैंड डेफिनेटली हैज गॉट अ बिट ऑफ लक टुडे, एंड बिट ऑफ यस यस नो नो काइंड ऑफ अ सिचुएशन. इज द लास्ट पेयर इन द मिडल, बट इट दैट इज व्हाट T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस shorter format of this wonderful game.
1: ये 19वां ओवर चल रहा है, और ये पहला मौका है जब कोई डायरेक्ट थ्रो मिस किया है थाईलैंड ने. इस ओवर के अगली बॉल के साथ तैयार हैं गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए. पिछली 30 गेंदों पर 25 रन भारत ने बनाए हैं और 4 विकेट गंवाए हैं. राउंड द विकेट आते हुए इस बार अगली गेंद फुल टॉस पर लेकर इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद, स्वीपर कवर पर. 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं, और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ भारतीय टीम का अब हो गया है 142 रन 9 विकेट के नुकसान पर.

0: अंतिम जोड़ी मैदान पर है भारत की तरफ से, और इस अंतिम जोड़ी से उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम ये 20 ओवर्स खेल जाएं, भारत ऑल आउट ना हो, वरना ये अपने आप में बड़ी ऐसी बात हो जाएगी जहां आप कह सकते हैं कि जग हंसाई वाली बात। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को फुल पिच थी, ऑन ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर एक रन आसानी के साथ लिया बल्लेबाज क्रांति गौड़ ने, और इस एक रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 143 रन भारत का 9 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर के बाद।
1: In fact, Iqbal, India would be backing themselves because they have a very strong bowling lineup and they have got some good runs on the board. But of course, as we mentioned at the beginning of the commentary, that in a multi-team format, the net run rate is always a very, very crucial thing, and this is a wonderful opportunity for India.
0: अगली बॉल के साथ राउंड द विकेट आ रही है माया, अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को कट किया, गेंद जा रही है पॉइंट और कवर के बीच में, एक रन आसानी के साथ, और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 144 रन 9 विकेट के नुकसान पर। श्री चरणी 4 पर और 3 पर क्रांति गौड़ बैटिंग कर रही हैं। माया का ये तीसरा ओवर है, अब तक उन्होंने 29 रन दिए हैं और कोई सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। पिछली 18 गेंदों से भारत ने कोई चौका या छक्का नहीं लगाया है, अपने आप में ये सारी कहानी आप समझ सकते हैं। अगली गेंद, हाई फुल टॉस, बॉलर के सर के ऊपर से उछाला, लेकिन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएगी गेंद, गेंद को रोक लिया गया। क्या नो बॉल का इशारा अंपायर का आएगा? ऐसा लग रहा है कि सिंगल तो भारत ने पूरा किया है, लेकिन नो बॉल करार नहीं दिया गया। गेंद डिप कर रही थी और कदमों का इस्तेमाल करते हुए भी खेला था बल्लेबाज ने, तो ऐसे में ये नो बॉल नहीं दिया गया। गेंद डिप कर रही
1: मार्जिनल
0: डिप कर रही थी गेंद। फिलहाल अंतिम गेंद के साथ माया तैयार हैं, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज नंदिनी। ये गेंद नंदिनी के लिए, और एक बार फिर से हाई फुल टॉस, इस बार इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर क्रैश किया, लेकिन स्वीपर कवर ने दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया, सिर्फ एक रन आखिरी बॉल पर। और इसी के साथ 19 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद भारत 146 9 विकेट के नुकसान पर। कम से कम अच्छी बात यह हो रही है पंकज कि भारत 20वें ओवर में प्रवेश कर रहा है।
1: Yes, and as OP Sharma, our statistician, gave us a number, highest score for India against Thailand is 148. Probably they should go ahead of that and there shouldn't be a need of rewriting some stats there. But important here is that the Thailand players are enjoying themselves. If you see them on the field, if you see them bowling, and that is really a very positive aspect about their team because they know they are up against a huge big team like India and they have got them on the back foot. So this is a very interesting match, and also for India it's a good learning because if you have a bad day very early on in a tournament, that's always better. But Team India of course needs to get a big victory here as they begin their campaign in this particular Asia Cup. So the last over of this innings coming up, Sri Charani is on strike. Thipacha, who has picked up a wicket, is getting ready to bowl her last over, left arm round wicket, a beautiful tossed up delivery, trying to lure Sri Charani into that big shot, make a mistake, doesn't really connect it well. A dot ball, very, very expensive. It's worth gold. And of course, you know how expensive gold is nowadays. Iqbal, this dot ball is actually worth 10 grams, if I could say that. Coming down the track and the batter misses it, the wicketkeeper misses it, and there should be a bye there for India. Coming down the track, Thipacha anticipated it really very well, kind of fired it under the bat, and the wicketkeeper couldn't really correct. Very difficult situation here for wicketkeepers to kind of collect that. She was disappointed, and wicketkeeping, overall fielding has been brilliant for Thailand. 147 for 9. Last over is in progress. Can India go beyond 150? Last pair in the middle. Coming down the track, Kranti has hit it high in the air and it goes all the way. Half a dozen runs to get the 150 up. Kranti Gaud with her shot over long off. That is a sign of confidence. 153 for 9. A good shot coming after quite some time.
0: बिल्कुल, और अच्छी खासी गेंदें खेलने के बाद भारत को एक बाउंड्री मिली है और ये छक्का, और जो रिकॉर्ड का आप जिक्र कर रहे थे कि भारत का 148 उच्चतम स्कोर रहा है थाईलैंड के खिलाफ T20 में, चलिए उसको तो भारत ने पार कर लिया है।
1: 153 for 9. Once again coming down the track, couldn't kind of come under that ball, drives it towards long on. Kranti, she will get a single and she will take India to 154 for 9. With the kind of score India had after 10 overs, 200 was the forecast on the cards, but there was a sort of an El Nino effect in between.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है और हम हाजिर हैं फ्री हिट 20 लेकर। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त गौतम, तो खिदमत में हाजिर है। और व्हाट अ मैच, 159 पहली इनिंग की बात करें, और हम कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन करके चल रहे थे कि अब की बार कहीं ना कहीं 200 के पार जरूर। लेकिन मेरा साथ देने के लिए और चर्चा करने के लिए कुछ ऐसे लोग आ गए हैं एक बार फिर से, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता है नहीं। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी हमारे साथ हैं, एंड बहुत ही वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार मिस्टर राकेश थपलियाल हमारे साथ हैं, और मेरी को होस्ट मेघा भी हैं। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, शुरुआत की बात करें वो रन आउट, और उसके बाद दो बड़े रन आउट, और 13वें ओवर के बाद कैसे थमी। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम पर थोड़ा सा विराम जरूर लग रहा था, लेकिन हाँ फाइनली एक सम्मानजनक स्कोर जरूर है। लतिका जी,
1: देखिए मैंने पहले भी कहा शो में कि ये एशिया कप बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगर भारतीय टीम के दृष्टिकोण से हम देखें, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से T20 क्रिकेट हम इतना बेहतर अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट में आप देखना चाहेंगे कि आपके बल्लेबाज गेंदबाज किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। और रही पावर प्ले की बात, अच्छा एक स्टार्ट मिला स्मृति मंदाना से और शेफाली वर्मा से, जो उन्होंने हिट्स लगाए, लेकिन मुझे लगता है कैजुअल अप्रोच की वजह से जो विकेट गवाया स्मृति ने, और उसके बाद लगातार जो आपके विकेट गिरे हैं उसकी वजह से आज ये टोटल जो 170 75 या 180 के आसपास भी हो सकता था वो कहीं ना कहीं 160 तक सिमट के रह गया।
0: शुरुआत काफ़ी अच्छी दी गई शेफाली वर्मा की अगर बात करें तो, हाँ कंसिस्टेंट रही हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर हुई, कहाँ पर आपको लगता है कि जिस स्कोर कार्ड की हम बात कर रहे थे वो शायद और भी विशालकाय हो सकता था।
2: देखिए एक तो स्मृति मंदाना का शुरुआत में रन आउट होना, कैजुअल आपने लिया कि भाई डायरेक्ट हिट नहीं हो पाएगी, एक कॉन्फिडेंस उनको था अपने ऊपर, फील्डर्स के ऊपर नहीं था, लेकिन जिनके साथ आप कम खेलते हैं वो ऐसे ही आपको चौंकाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज है प्लेयर्स की, नहीं लग रहा था कि वो इस तरह की बेहतरीन थ्रो कर सकती होंगी, लेकिन वो उन्होंने की। वहाँ से हमारा थोड़ा सा बैड पैच शुरू हो गया, और उसके शेफाली वर्मा ने अच्छा किया, लेकिन आप देखो कि आप किस तरह का जो शॉट सिलेक्शन है, शेफाली वर्मा हरमनप्रीत कौर जिस तरह से इजी कैचेस उन्होंने खेले, जिस तरह के जो शॉट्स खेले, वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरीके के शॉट्स खेलेंगे। तो बहुत ही ईजी, पहले जो बड़े शॉट्स लग रहे थे उसमें वो आउट

0: फील्ड में कैच पकड़ते हुए नजर नहीं आ रही थी फील्डर, ऐसा लग रहा था कि इनको कैच पकड़ने की कला में महारत नहीं है। लेकिन जब आपने इतने इजी कैच दे दिए, बॉलर के हाथ में दे दिया, दूसरे फील्डर्स को इतने इजी कैच दे दिए, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो ये मुझे लगता है कैजुअल अप्रोच जो रही, पहले 10 ओवर में आपने बना लिए 100 रन, तो उससे आपको लगा कि भाई हम तो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है वो बहुत ज़बरदस्त थाईलैंड की टीम ने, और ये दिखाया उन्होंने कि क्यों वो इसके जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था उसमें क्यों वो चैंपियन बने। यूएई जैसी टीम को फाइनल में उन्होंने हराया। उनके बॉलर्स बड़े नाम भले ही वैसे ना हो, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। स्पिनर्स ने खासतौर पर बड़े अच्छी गेंदबाजी की, लेग स्पिनर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट लेना और 2 बार एक एक ओवर में 2-2 विकेट। आपने क्रिकेट में कहा जाता है नेवर लूज 2 क्विक विकेट्स, वो फार्मूला जो है शायद इनके दिमाग से उतर गया हमारे खिलाड़ियों से, 2-2 विकेट गए। और जो नए खिलाड़ी हैं जिनको जैसे मौका, प्रतीका रावल ने थोड़ा अच्छा किया लेकिन आउट बड़े खराब ढंग से हुई, जो प्रेमा रावत हैं वो जिस तरीके से आपने पिच में आप आगे निकल आए, उस समय ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की, जब आपके विकेट्स गिर रहे हैं थोड़ा सा आपको रुक के चलना चाहिए। क्रिकेट में देखो रन बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन हाउ टू बिल्ड द इनिंग्स सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। पारी को संवारने की कला अगर आपके अंदर नहीं आएगी तो वही होगा जो आज यहाँ भारतीय टीम के साथ हुआ।
1: बिल्कुल, इट टर्न्ड आउट टू बी अ टेल ऑफ टू हाफ्स विद इंडिया स्कोरिंग 101 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स एंड देन सब्सिक्वेंटली जस्ट मैनेजिंग 58 फॉर 7, ऑल्दो ऑब्वियसली क्रेडिट टू द टेल एंडर्स फॉर इंश्योरिंग लतिका कि भारतीय टीम ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की।
2: देखिए 20 ओवर बल्लेबाजी तो यहाँ पर करी, लेकिन मैं गेंदबाजी की तारीफ ये करूँगी कि उन्होंने एक ही लाइन एंड लेंथ में गेंदबाजी की है। भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बड़े शॉट्स खेलने का। ज़रूर शुरुआत अच्छी रही भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से शेफाली और स्मृति से, लेकिन उसके बाद लगातार परेशान किया, डॉट बॉल्स का प्रेशर बनाया जिसका शिकार हरमन भी हुई गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से। आगे आने वाले जो बल्लेबाज हैं उन बल्लेबाजों को भी तकलीफ हुई रन बनाने में, और ये क्रेडिट जाता है इनकी गेंदबाजी पे, इनकी फील्डिंग एफर्ट्स पे, जिस तरह के कैचेस लिए, डायरेक्ट हिट्स लिए। तो एक दिखाता है कि ये टीम आपको इतनी आसानी से रन नहीं बनाने दे रही है। तो अब ये कॉम्पिटिशन, अब ये देखना होगा कि बल्लेबाजी में आके ये लोग क्या करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ चिंताएं यूं की यूं बनी हुई हैं भारतीय टीम के लिए, जिससे ये पार पाना चाहते होंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड अभी एक और पार्ट बचा है इस मैच का, हम उसको देखेंगे वो किस तरीके से।
3: बिल्कुल, चिंता के विषय की आपने बात यहां पर की और कहा कि प्रेशर में बिखरे नहीं निखरे। एक मोड ऐसा भी आया था जब रिचा को शायद वो स्टेज सेट करने का मौका मिला था, वहां पर भी गड़बड़ हुई कहीं ना कहीं, और ये क्वेश्चन मार्क हमेशा से लगा हुआ है कि वो जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ती है ऐसे मोड पर।
0: बिल्कुल, आपने आते ही पहली गेंद से इस तरीके का वो जो शॉट खेला है वो उससे ऋचा घोष से वैसी उम्मीद नहीं आपको की जाती, आपने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। देखिए बॉलर्स का, फील्डर्स का जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम वो हमारी बल्लेबाजों ने किया है। वो तो 10 ओवर में पूरी तरह से डाउन आउट हो चुके थे, हमारा बड़ा स्कोर, मैंने देखो आपको पहले भी कहा था कि जो इनिंग खेले वो एंड तक लंबी इनिंग जाएगा अगर एंड तक आपका शुरुआती बल्लेबाज टिकेंगे। अगर एंड के ओवर्स में, लास्ट 5-6 ओवर्स में आपके नए बल्लेबाज आएंगे तो आपको रन बनाने में दिक्कत आएगी, आप बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन शफाली ने जिस तरीके से इनिंग खेली, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, जितनी तारीफ हो उतनी कम है, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुई उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। वैसी उम्मीद मतलब नहीं की जाती थी कि इस तरीके से आउट होंगी। जो कप्तान हरमनप्रीत ने जो बैड शॉट खेला इस तरीके से, वैसी उम्मीद उनके साथ नहीं थी। लेकिन इन बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी, इन्होंने स्पिनर्स ने ज़्यादा तेज फेंकने के बजाय बॉल को धीमा रखा, हवा में ज़्यादा लटकाया, वेरिएशंस के साथ की, कोई कोई बॉल उन्होंने इस तरीके से की जो ज़्यादा बाउंस उस पर पिच पे नहीं आया, तो उनको उस वेरिएशंस का फ़ायदा मिला। और एक लाइन पे स्टिक करना, एक कम अनुभवी गेंदबाज जो होते हैं जिनको ज़्यादा इंटरनेशनल का अनुभव नहीं होता और एक बड़ी टीम के खिलाफ जब खेल रहे होते हैं तो बड़ी हिम्मत चाहिए बॉलर्स के अंदर, खासतौर पर स्पिनर्स के अंदर, वो भी T20 में। बहुत हिम्मत इन गेंदबाजों ने दिखाई है कि जिस तरह की बिल्कुल विकेट टू विकेट उन्होंने गेंदबाजी की। शुरू में ठीक है थोड़ा बहुत वेवर्ड रहे वो, उनके फास्ट बॉलर्स को भी शॉर्ट पिच गेंदे की, क्योंकि आजकल शॉर्ट पिच गेंदों पे ही लोग विकेट लेते हैं, फास्ट बॉलर्स का तो एक फंडा ये बन चुका है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो वुमेंस क्रिकेट हो, कि आप शॉर्ट पिच फेंकते रहो कितने मारेगा कोई, एक आध तो उठ ही जाएगी ना कैच, तो वो वाले उस पर अच्छे रन बनाए। लेकिन जो बैड शॉट सिलेक्शन है वो भारत को बहुत नुकसान दे गई।
3: लियोम ने कमाल तो किया, 3 बड़े विकेट लिए, लेकिन यहाँ पर जिनका डेब्यू हुआ उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रतीका रावल, एक बड़ा शॉट जरूर देखने को मिला,

पति का रावल ने देखो अच्छी की, एक अच्छी साझेदारी उन्होंने लगाई है शेफाली वर्मा के साथ, अक्षतीय साझेदारी करना आसान नहीं, अच्छा किया। लेकिन क्या होता है कि आपको जब आप टिक गए तो आपको लंबी इनिंग खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो उसमें कहीं ना कहीं कमजोर रह गए। और जब क्या था, लगातार विकेट आपके गिरने लगते हैं तो जो विपक्षी टीम है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप बहुत बड़े नाम हैं, थाईलैंड्स के जो प्लेयर्स हैं वो इतने बड़े नाम नहीं है, उनके लिए उनके गेंदबाज के लिए स्मृति मंदाना को आउट करना बहुत बड़ी बात, उनके फील्डर्स के लिए डायरेक्ट हिट, ये बार बार चीजें दिखाई जाएंगी, लोगों के जहन में रहेंगी। स्मृति मंदाना भी आज रात को सो नहीं पाएंगी कि किस तरीके से डायरेक्ट हिट इस तरीके से लगा है, वो बड़ा हर्ट करता है किसी भी प्लेयर को। दीप्ति ने खुद अपनी कॉल पे जाके आप रन आउट हो गए, आप बॉल को देखने लग गए, फील्डर को देखने लग गए, आपने अपने उस पे रन पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे अपना एरिया कवर करना है। वो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बताया जा रहा था भाई कैंप में।

इस तरीके से लगा है, वो बड़ा हर्ट करता है किसी भी प्लेयर को। दीप्ति ने खुद अपनी कॉल पे जाके आप रन आउट हो गए, आप बॉल को देखने लग गए, फील्डर को देखने लग गए, आपने अपने उस पे रन पे ध्यान नहीं दिया।

0: कुश्ती प्रतीका रावल को, और एक कॉन्फिडेंस भी दिखा था जिस तरीके से उन्होंने सामने एक बड़ा हिट भी लगाया था. तो मुझे लगता है कि वही बात है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं उनको और आपको एग्जीक्यूशन में लाना बहुत ज़रूरी है.
1: खासकर हम अगर रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट की बात करें और अब सेकंड इनिंग की तरफ जब हम जाएंगे, तो ऐसे में दीप्ति का कंट्रीब्यूशन और श्री चरनी का कंट्रीब्यूशन कितना अहम होना चाहिए पावर प्ले में?
2: देखिए, बड़ा अहम रहेगा. जैसे उन्होंने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ शुरुआत की, तो आपको जो एक ओवर फास्ट बॉलर से कराया, सेकंड ओवर उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर से कराया, तो मुझे लगता है यहाँ हमारे साथ भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि स्पिनर शुरुआत में ही लगें और पावर प्ले में ज़्यादा ओवर उनको मिल जाए करने को. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बेहतरीन फील्डिंग करनी होगी और विकेट चटकाने की तरफ जाना होगा. अगर आप शुरुआत में विकेट नहीं लेंगे, कमबैक तो देखिए कर सकते हैं, इन्होंने भी कमबैक किया. कहा जाता है टी ट्वेंटी में कमबैक नहीं होता, लेकिन कमबैक हुआ है थाईलैंड का ना, तो यहाँ हमारा भी हो सकता है. लेकिन हमें अगर स्ट्रांग पोजीशन में रहना है तो शुरुआत में ही हमें विकेट चटकाने होंगे.
1: बिल्कुल, गलती गलत फहमियों में तब्दील नहीं होनी चाहिए. खासकर टेक द कैचेस एंड विन द मैचेस. वो कैच पहले भी छोटे थे, लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में हमसे वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए जो थाईलैंड ने की.
2: कोई भी किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और सबको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा और उनके बल्लेबाजों को भी हल्का मानने की गलती नहीं करनी होगी.
0: मुझे लगता है कि उनके कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे रन्स बनाते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर खासा ध्यान देना होगा. हमारे जो गेंदबाज हैं, अगर हम मीडियम पेसर्स की बात करें, नंदनी की बात करें, क्रांति गौड की बात करें, तो पिछले कुछ समय से हमने वो फॉर्म उनकी गेंदबाजी में नहीं देखा है. वो विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी खलती है, रन्स ज़्यादा लीक होते हैं. तो ये सब देखना होगा कि आपने उन दोनों गेंदबाजों को अगर आज के प्लेइंग 11 में रखा है तो क्या हम दोनों को नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, या एक एंड से हमें पेस अटैक दिखेगा, एक से स्पिन अटैक दिखेगा, ये देखना होगा. लेकिन पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे दोनों ही गेंदबाज देखने कि नई गेंद से वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं. क्योंकि अगर आप काम करके आए हैं तो ये मैं बार बार कह रही हूँ, एशिया कप एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कि आप हर चीज़ को यहाँ एग्जीक्यूशन में लेकर आ सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि अपफ्रंट होके उन्हीं दो गेंदबाजों से आप शुरुआत करा सकते हैं इनिंग की.
3: बिल्कुल. और राकेश, हमने देखा कि किस तरह से इनिशियल ओवर्स में देयर वाज मूवमेंट अप फ्रंट. हालांकि जैसा आपने मेंशन किया, शॉर्ट पिच डिलीवरी कर रही थी पेसर्स, इसलिए उतना मूवमेंट को भुना वो नहीं पाए.
2: नहीं बिल्कुल, और हमारी जो बल्लेबाज है ना, वो देखिए शॉर्ट पिच गेंदों पे बहुत अच्छे, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, शेफाली वर्मा हो, बड़े अच्छे पुल शॉट्स लगाने में वो महारत थी. और ऑफ साइड की गेंदों पे भी आजकल बढ़िया पुल शॉट लोग लगाते हैं, तो सही लाइन और लेंथ में वो होना चाहिए. लतिका ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं तो आपको शुरुआत में उनके साथ दो दो ओवर तो कम से कम जाना चाहिए.
1: बिल्कुल, और वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं. और खासकर ऐसी पिचेस की अगर हम बात करें, दुबई स्टेडियम की बात करें, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब सेकेंड इनिंग में आपकी?
2: देखिए, ये पहला मैच होता है किसी भी टीम का, जब एक किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के अंदर, तो थोड़ा सा एक पिच को लेके होता है कि जब तक आप खेले नहीं, प्रैक्टिस पिचें एक अलग तरह की होती हैं और जब आप मेन पिच के ऊपर खेलते हैं तो एक अलग तरीके की चीज़ आपको मिलती है. तो आज थोड़ा सा एहसास होगा, पिच का अंदाज़ा हमारी बल्लेबाजों को हो गया होगा, सब अनुभवी हैं, और मुझे लगता है कि अब वो जो गेंदबाजी है उन्हीं की तरह से सही लाइन और लेंथ की बॉलिंग आपको करनी होगी और विकेट लेने की तरफ जाना पड़ेगा. अगर 20 ओवर पूरे खोलेंगे तो हो सकता है वो आपको मैच में हरा भी दें.
1: बिल्कुल, टेल एंडर्स, ये सवाल कहीं ना कहीं आज आया है. लतिका मैम, तो आपको लगता है कि शुरुआत अगर आप सही कर लेंगे?

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में लीजिए प्रस्तुत है जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन वादन। जी राघवेंद्र प्रसाद कर्नाटक वायलिन वादक हैं और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। दिल्ली में जन्मे जी राघवेंद्र प्रसाद ने कर्नाटक वायलिन वादन की बारीकियां अपने गुरु कलैमा मणि श्री वी एस के चक्रपाणी जी के मार्गदर्शन में सीखी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, जहां आप रजत पदक विजेता रहे हैं। राघवेंद्र प्रसाद एकल वादन के साथ साथ एक सिद्धहस्त संगीतकार के रूप में भी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए आपको युवा कलाकार छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको सन 2010 में CCRT छात्रवृत्ति, 2019 में युवा पुरस्कार और युवा उभरते कलाकार का खिताब, 2022 में नाद लय शिखामणि तथा 2023 में संस्कृति मंत्रालय एवं आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संयुक्त रूप से गंधर्व विज्ञ सम्मान से नवाजा गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहराते हुए आपने रूस में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भाग लिया और स्विट्जरलैंड के रीटबर्ग संग्रहालय में प्रस्तुतियां दी। देश के प्रतिष्ठित मंचों जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जालंधर का प्रसिद्ध हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, राष्ट्रपति भवन, TTD, नाद नीराजनम, वाराणसी का श्री संकट मोचन मंदिर, स्पिकनके तथा तिरुवैयारू में त्यागराज आराधना महोत्सव में भी इनकी प्रस्तुतियां सराहनीय रही हैं। एक कुशल संगीतकार के रूप में राघवेंद्र ने पद्मभूषण श्री TN शेष गोपालन, मल्लाडी ब्रदर्स, नेवेली श्री संथान गोपालन, श्री OS अरुण, मामलम सिस्टर्स तथा डॉक्टर के वागीश जैसे संगीत जगत के शीर्ष दिग्गजों के साथ सफलतापूर्वक वायलिन संगत की है। आइए सुनते हैं जी राघवेंद्र प्रसाद का कर्नाटक वायलिन वादन। आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री वरुण राजशेखरन संगत कर रहे हैं। जी राघवेंद्र प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मणिरंगू से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभानुजेशा। इसके रचनाकार हैं महाराजा स्वाति तिरुनाल। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वायलिन रिसाइटल बाय जी राघवेंद्र प्रसाद। जी राघवेंद्र प्रसाद इज एन ए ग्रेड वायलिन कर्नाटक आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। ही हैज डन हिज मास्टर्स इन कर्नाटक म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ही हैज लर्नड बेसिक्स ऑफ वायलिन रिसाइटल बाय कलैमा मणि श्री VSK चक्रपाणी। ही इज रेसिपिएंट ऑफ स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट awarded in the year 2019-20 by Ministry of Culture for Carnatic Instrumental Violin. He was awarded scholarship by Center for Cultural and Resources Training in the field of Carnatic Music Instrument Violin in 2010. Awarded Gandharva Vignya jointly by Ministry of Culture, Government of India and Art of Living Bengaluru in January 2023, he has performed violin concerts in India International Center, हरिवल्लभ फेस्टिवल जालंधर, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, तमिल संगम, लोक कला मंच, भारतीय विद्या भवन चेन्नई एंड मेनी प्लेसेस इन दिल्ली एंड चेन्नई। ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ प्रेस्टिजियस फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रशिया, परफॉर्म्ड इन रेडबर्ग म्यूजियम स्विट्जरलैंड एंड हैज परफॉर्म्ड इन वेरियस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही हैज ऑल्सो अकम्पनीड लीडिंग आर्टिस्ट लाइक पद्म भूषण एंड संगीत कला निधि श्री TN शेष गोपालन, मल्लाडी ब्रदर्स श्री विष्णु देव, नेवेली श्री संथन गोपालन, श्री OS अरुण, मामबलम सिस्टर्स, डॉक्टर मंदा सुंदरानी, डॉक्टर के वागीश, डॉक्टर TV मणिकंदन, डॉक्टर कन्न कुमार एंड अदर रिनाउंड आर्टिस्ट। Accompanied in various places like Sangeet Natak Academy, Sri Sankat Mochan Hanuman Temple in Varanasi, SPICMACE, IGNCA, Andhra Bhavan, India International Center, India Habitat Center, Chinmay Mission, Telugu and Malayali Associations, etc. Today, he is accompanied on Mridangam by Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Varun Rajshekharan. G. Raghavendra Prasad begins his violin recital with Rag Manirangu, composition Jai Jai Padmana Bhanu Jesh, composed by Maharaj Swati Tirunal, and is set to Adi Talam.

0: ये था जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग मणिरंगू। कार्यक्रम को जारी रखते हुए जी राघवेंद्र प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग वराली। रचना के बोल हैं शेषाचल नायकम। इसके रचनाकार हैं मुथुस्वामी दीक्षितर। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Manirangu. Continuing his recital, G. Raghavendra Prasad now presents another composition based on Rag Varali. Composition is Shesha Chalanayakam, composed by Muthuswami Dikshitar and is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग वराली। अपने कार्यक्रम का समापन जी राघवेंद्र प्रसाद राग बिलहरी से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं श्री चामुंडेश्वरी पालय माम। इसके रचनाकार हैं मैसूर वासुदेवाचार। ये रचना आदि ताल में निबद्ध है।
1: जी राघवेंद्र प्रसाद कंक्लूड्स हिज वायलिन रिसाइटल विद रागम बिलाहरी। कॉम्पोजिशन श्री चामुंडेश्वरी पालय माम, कंपोज्ड बाय मैसूर वासुदेवाचार एंड इज सेट टू आदितालम।

0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर वरुण राजशेखरन संगत कर रहे थे। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by Yashwant Hampi Holi and on Ghatam by Varun Rajashekharan. With that, we conclude tonight's Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.